गावन तुदन चेत गुपत लेख जानन लेख लेख तारम बिचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे।

विचारे गावन तुदन जति सती संतोखी गावन तुदन वीर करारे गावन तुदन पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वडयाई।

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई।

कर धरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोए न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया। उडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करिया।

निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा

जी जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी, से जन युग मै सुख वासी, से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का

पढ़ बहु सिमरत स्वास्थ जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निह चल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साई, जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

बचावहो। सुखी बस मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चिटी ते कुंचरया सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत। महादेव काओ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जब

निकट नह आए है। रक्षा होए ताहे सब काला, दोष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दोष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

दुष्ट दोख तेले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, ताबते को आंख तरे नहीं आने।

राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले

वस्तु पयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वसत तजी नह जाई नित नित राख उर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पाए होई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे पौ जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोए न जाए जे आवै तुदे आहे सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखणा श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतया दरगह पाइया ठाओ कहो नानक किरपा करे जिसनु ए वाथ दे जग मह उत्तम काडी है विरले के महला पंजवा।

आप दयाल मनहु ना विसारेयन साध जना कै संग भव जल तारेयन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारेयन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जब प्रयोजन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना। आज भी कोई भावना नाल महाराज नु याद करे, महाराज दा नाम ले। कहंदे ने जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट कोई संकट नहीं आउंदा, जोन जूनिया विच नहीं जांदे, गर्व ना आयो, वार वार गर्व दा दुख नहीं मिलदा। ऐसी बख्शिश है महाराज दे नाम अंदर, जिन्होंने पाणा की होंदा है परतक निरंकार दा आसरा लैके करके विखाया है। कहनी ते कथनी दे मालक, इसे करके शहीदां दे सिरताज बन गए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे दादा जी बन गए, और फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पिता जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, उन्हां दियां बख्शिशां मेरी पीरी दी, और फिर चार पोतरे, फिर पुत्र, सिख पंथ दी चढ़दी कला वास्ते ऐसे शहीदी दे जाम पीते जीना सिखाया ते मरना भी सिखाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज नु हमेशा ही नमस्कार है। सचे पातशाह जी दी याद हमेशा हिरदे विच वसा के रखिए। महाराज कहंदे ने मैं तत्ती तवी ते बह के भी शुक्र मनाया, तत्ती तवी ते बह के भी खुशियां दे गीत गाए, भाणा मन्या, पर अज दा गुरसिख लखां सुख लैके भी परेशान है। वो तत्ती तवी ते भी खिड़ खिड़ा के बैठे, पर असी एसी रूम विच भी तपी जांदे। महाराज कह रहे ने आत्मा दा भोजन रज रज के करो। शरीर दा भोजन वखरा है, रूह दा भोजन वखरा है। शरीर दे पदार्थ जिन्ने मर्जी चक लो, जे अंदर टिका बनाउणा है ना, ते फिर महाराज दा नाम जपिए। धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी दी सिख्या सदा हिरदे विच वसाइए जी। भुल चुक दी खिमा अगला प्रोग्राम भाई साहब भाई सिकंदर सिंह जी गुरमत विचारा नाल जोड़ियां भरनगे। असीस देव, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

0: संग मोहे उदारो
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम
0: भगत जना के मन बिसराम
1: रहाओ प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे
0: प्रभु के सिमरन दुख जम न से
1: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
0: प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे
1: प्रभु सिमरत कछ विघ्न न

0: कार्य पूरे
1: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी
0: प्रभु कै सिमरन
1: ने चल आसन
0: प्रभु
1: कै सिमरन अनहद चुनकार
0: सिमरन का अंत न
1: पार सिमरह से जान जिनको प्रभु मया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते
0: हर सिमरन
1: हर सिमरन

0: सरणी पर
1: जिस जन को प्रभु दरस प्यासा
0: नानक काके बल बरसा
1: सकल पुरख में पुरख प्रदान
0: साथ संगा कर्म के अभिमान
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो बनिय सत्य ऊंचा
1: जहाँ का मन हो सकल की
0: कटकटीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना
0: सकल
1: दुख दुख जन समेता
0: निर्धन
1: को तन तेरो
0: नाओ को ना तेरा था
1: निमाने को प्रभ तेरो मान

0: कवर न जानस कोए।
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
0: हर को नाम जप निर्मल कर,
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
0: सार संग मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला,
1: हर का नाम जपो जी सदा, सगल वाणी में अमृत वाणी,
0: हर को जस सुन रसन।

0: अष्टपदी
1: रमैया के गुंचेत परानी
2: कवन मूर्ते कौन दृष्टानी
1: जिंतु सात सवार सिगारिया
2: घर बगल में जिन्हें उबारिया
1: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
2: पाजो बन भोजन सुख सुरू
1: बिर्द पया ऊपर साख सहन
2: मुख प्याओ बैठ को दैन
1: ए निर्गुणगन ए निर्गुण गुण कछु न बूझे
2: बख्श हो तो नानक सी जय
1: जे प्रसाद तार ऊपर सुख बस है
2: सुत प्रात नींद बनता संघर्ष है
1: जे प्रसाद पीवे शीतल जला
2: सुखदायी कौन बाबू मुल्ला
1: जे प्रसाद भोगे सब रसा
2: सगल समरी संसार दशा
1: तीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
2: जिसे त्याग और संरचना
1: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे
2: नानक काढ़ लेव प्रभु आपे
1: आद अंत जो रखन हार
2: इसो प्रीत न करे ग्वार
1: जाकी सेवा नव निध पावे
2: मन नहीं लावे
1: जो ठाकुर सद सदा हजूरे
2: आको अंदा जान दूरे
1: जाकी टहल पावे दरगह मान
2: जान
1: सदा सदा ए भूलन हार
2: नानक राखन हार अपार
1: रतन त्याग कौडी संग्रचे
2: छोड़ छूट समचे
1: जो छड़ ना सो स्थिर कर माने
2: जो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका

0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे,
1: करगा ले हो उड़ने आवे,
0: कहा बुझारत बुझे डोरा,
1: इसके ये तो समझे कोरा,
0: कहा बिसन पद गावे गुंग,
1: यतन करे तो भी सुर भंग,
0: कह पिंगुल पर्वत पर पवन,
1: नहीं हो तो आव सवन,
0: करतात करुणा में दीन बेंती करे,
1: नानक मुझे कृपा करे,
0: सांग सहाई सो आवे न चीत,
1: जो बैराइता सुप्रीत,
0: बलुआ के ग्रह पीतर बसे,
1: अनंत केल मार रहे,
0: लिड़कर माने मने प्रतीत,
1: मूढ़े चीत,
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: झूठ विकार मालोक रो,
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म,
1: नानक राम देव अपन कर कर्म,
0: तू ठाकुर तुम पैरदास,
1: जियो पिंड सब तेरी रास,
0: मात पिता हम बारिक तेरे,
1: पूरी कृपा में सुख कनेरे,
0: कोई न जाने तुमरा अंत,
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत,
0: लगल समग्री तुमरे सूत्र

0: राम ज्ञानी निर्मलते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जलाम
0: राम ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे तरु पर आकाश
0: राम ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: राम ज्ञानी के नाई अभिमान
0: राम ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने सबते नीचा
0: राम ज्ञानी से जन पे
1: नानक जिन प्रभु आप करे
0: राम ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस राम ज्ञानी चीना
0: राम ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: राम ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया
0: राम ज्ञानी सदा समदर्शी
1: राम ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी
0: राम ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: राम ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: राम ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान
0: राम ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: राम ज्ञानी के गरीबी समाह
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा
0: राम ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी लेता उत्बंधा
0: राम ज्ञानी के होए सोपला
1: ब्रह्म ज्ञानी सोपल फला
0: राम ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अंग बहुत
0: त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल जाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी का असल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाय अध्यक्षर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है
1: ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी

0: इच्छा नहीं बात छह
1: केवल भगत कीर्तन संग राज छह
0: अंतर अंतर सिमरन गोपाल
1: प्रभु कृपाल
0: आप दृढ़ अवर नाम जपावे
1: नानक को वैष्णव परम पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मनते दिन से सगला परम
1: पूजय सगल पार परम
0: सास संग पापा मल खोवे
1: भगवती की मत तुम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: वंदनार्थ है विष्णु प्रीत
0: हर कै चरण हृदय बसावे
1: नानक सब भगवती भगवंत को पावे
0: ओ पंडित जो मन पर बोध
1: राम नाम आत्मा में सोधे
0: राम नाम सारस पीवे
1: पंडित के उपदेश जगी

0: कोट सिद्ध जति जोगी
1: कोट राजस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कोट पात्र दिप निजाय
0: कई कोट पवन पानी बै संतर
1: कोट देश मंडल
0: कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र
1: कोट देवता इंद्र
0: सगल समग्री अपने सूत धार।

0: प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: कोट
0: कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले विरथारे
0: अनेक तपस्या करे अंकार
1: नरक सुरक फिर अवतार
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दर गए को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: किसे भलाई निकट नावे
0: सर्व की रेन जाका मन होए
1: कौन नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: तब इसको सुनना ही कोए
0: जब ही जाने मैं किछ करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: तारे को बैरी मीत
1: तब लग ने चलना ही चीर
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय जे सजाए
0: रब कृपा से बंधन टूटे
1: गुरु प्रसाद नानक को छूटे
0: सहज खटे लग कौट तावे
1: तृप्त नावे माया पाछे पावे
0: अनेक भोग भिख्या के करे
1: न तृप्त आवे कब कम मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोर दिल से सो काजे
0: राम रंग सर्व सुख होए।

0: आप उपदेश समझे
1: आप रचिया सबके साथ
0: तीनों अपन
1: विस्तार कहो करने हार
0: उससे पिन कहो कुछ हो उससे पिन कहो कुछ होए
1: एक कैसो
0: अपने चलत आप करने हार
1: और तकरे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नान कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुर प्रसाद किने वखियानी
0: सच सच सच सब कीना
1: कोट मुझे किने मिले चीना
0: पला पला पला तेरा रूप
1: सुंदर अपार रूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी।

0: आपके सेवक सगल उदाहरण
1: आपका सेवक दुख विसार
0: आपे मेल लय कृपाल
1: का सब जप है
0: सेवा सोई लागे
1: कृपा करे वट पाके
0: राम।

0: एक उस्तत अनेक
1: सत्पुरख पूर्ण विवेक
0: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
1: अगम गोचर पर निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई
1: ताकी कीमत किने न पाई
0: अनेक भगत बंधन नित करहे
1: चरण कमल हृदय सिमरै
0: सद बलहारी सतगुरु अपने।

0: प्रसाद कैसा है।
1: परे शरण आन सब त्याग
0: अंतर प्रकाश अंधेरी लाग
1: भागी जपया प्रभु सोए
0: नानक नाम रते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी
0: पई सदगुण के निर्मल मत लई
1: जन को प्रभु होयो दयाल
0: सेवक की नो सदा निहाल
1: बंधन काट मुक्त जन पया।

0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जय का है आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमूल्य कला निरतन
0: उन्नत

0: नानक उदय तिन कैसा थे,
1: सरन जोग सुन सरनी आए,
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए,
1: मिट गए बैर पए सब रे,
0: अमृत नाम साथ मिले,
1: प्रसन्न पए गुरुदेव,
0: पूर्ण हो सेवक की सेव,
1: हाल जंजाल बिकार ते रहते,
0: राम नाम सुंदर सुना कहते,
1: प्रसाद दया प्रभ तारी,
0: नानक जी के हमारी,
1: सबकी उस्तत करो संत मीर,
0: सावधाने कागर चीर,
1: रुक्मिणी सहज गोविंद गुण नाम।

सगल समग्री तुम रह सुतर तुमते हो सो तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक नहीं ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस दिठे सब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरै करनो निध्यावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियों दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान रखे बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुकतियां अठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई देग वाही देग के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ने चलाए गुरुद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिक्खी केसा स्वस्थ संघ निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान रखे बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख कोय जहां जा खालसा जी साहिब तहत हर शरिया जिगते फतेह ब्रद की पाए पंथ की जीत श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदार नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उची मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे नमाण्यो के माण नताण्यो के ताण न्योटिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुत भावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा च अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दियां विचारां उपरंत तन तन साहिब श्री गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज आप जी दी शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित सिख गुरद्वारा सनहजी दियां समूह संगतां वल्लों उपराला कीता गया शामा दे दीवान विच महाराज जी सुखमणी साहिब जी दे संगती रूप विच सिख संगतां ने जाप कीते कृपा करनी महाराज जी बाणी पढ़दियां कीर्तन करदियां विचारां करदियां सुखमणी साहिब जी दे जाप करदियां महाराज जी होईयां बेअंत बेअंत भुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उद्दम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदयां ते वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभनां दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभनां नूं दरो करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी बेअंत संगतां दूर दुराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी का धनवाद करदे बेअंत वाहिगुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत दी हाजरी दर प्रवान करने सभना की माया सफली करनी कृत कमाइया बरकत पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया जी आप जी दर घर दे सेवक भाई बलराज सिंह गिल समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती अते चढ़दी कला की अरदास बेनती करदिया गुरु घर वास्ते $200 माया भेटा करदिया कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी देर उगता तंदुरुस्तियां प्रदान करनिया जीओ
ਭਾਈ ਨੀਰੋ ਮੁੰਜਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੀ ਅਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਿਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਰਾਧਕਾ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਸੁਣਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ।

पूजस नाही। हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होम माए कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड प्रथमी फिरे चेर जीवे, महा उदास तपी सरथी वै, अगन माहे होमत परान, कनक असव हैवर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम आत साधन, निमुख निमुख कर शरीर कटावै, ताऊ पी होमे मैल न जावै, हर के नाम सम सरकश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै, सोच करे दिन सो अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करै, मन ते कबहू न बिखिया टरै, जल तो वै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच, बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै, भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै, छूटस नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग इहो मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन कौ प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सौ गनिये सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट जीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निरतन को धन तेरो नाउ, निथावे को नाउ तेरा थाउ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल घटा को देव दान, करण करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी, अपने गात मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम मैं उद्दम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जिह कट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार अयानिया, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया ते सचीत रख, नानक निबिहि नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूलते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन मैं जिने उबारिया, बारब विस्था तुझे प्यार दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ पौ दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लिहो तौ नानक सीजै, जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सोत प्रात मीत बनता संग हसै, जिह प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जिह प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, नानक काड लिहो प्रभ आपे, आद अंत ज्यो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निद पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगै मान, तिसै बिसारै मुगद अजान, सदा सदा ए भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर तहब प्रीत भस्म संग होए, अंधकूप में पतत बिकराल, नानक काढ लिहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, शपश नाहे कश करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान

राम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गावै को साज करे तन के, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै तिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे तक पाहि, जुगा जुगंतर खाही खाही, हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै विप्रवाहु, साचा साहिब साच नाई, पाक्या पहु अपारु, आख है मंग है देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखी है, जित दिसै दरबार, बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक वै जानिए सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान, गावी है सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई, गोरेसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही कहना कतन न जाई, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जित पावा विण पाने के नाए करी, जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे, तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे, सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल सुनया पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगाओ, सुनया दुख पाप का नास, सुनया ईश्वर वर्मा इंद, सुनया मुखशाला हनुमंद, सुनया जोग जुग तन भेद, सुनया शास्त्र सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगाओ, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया अठसठ का इसनान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नाश, सुनया सरा गुणा के गाह, सुनया सेख पीर पातशाह, सुनया अंधे पावह राहु, सुनया हाथ हुवै सगाहु, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुँह छोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पातशों पर गड़ जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंधु, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पाव है मुख द्वार, मन्ने परवार है साधार, मन्ने तरै तारे गुरसिख, मन्ने नानक भव है न भिख, वैसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दर गहमान, पंचे सोह है दर राजान, पंचा का गुरेक ध्यान,
जे को कह करे विचार करते कह करने नाही समार ताओल धर्म दया का पूत संतोख थावर किया जिन सूत जे को उपजै हुए सचियार तवले ऊपर किता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता हुए केता तान सुवाल हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता फसाओ एक कुवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारे आना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप संख पाऊ संख पूजा संख तप ताओ संख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाथार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोह लिवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराए असंख मलेश मल पक खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारे न जावा एक बार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ताव अगम अगम संख लो असंख है सिर पार हुए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बानु अखरा सिर संजोग बखानु जिने ए लिखे तिस सिर नाहे जिब फरमाए तिब तिब पाहे जीता कीता तीता नाओ विनदा वै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन देहि पानी धोते उतर सुखेहि मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण लइए उह धोए भरिए मत पापा कै संग ऊ तो पहनावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाहु आपे बीज आपे ही खाहु नानक हुक्मी आवहु जाहु तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता भाऊ अंतर का तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाऊ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन तित कवन वार कवन सिरुति माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाईया पंडती जे हुआ लिख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण ले कुरान तित वार ना जोगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीको साजी आपे जाने सोई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखण सब को आखै इक दू इक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जी को आपाओ जाने अगै गया न सो है पाताला पाता लख आगासा आगास कूड़ कूड़ कपाल थके वेद कह निकवात सहज अठा रह कहन कते बासलो एक धात लिखा हुए त लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डाया किया आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदिया तैवाह पवह सुबंध न जानिया सुमन सह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन हुन विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करने दीन न अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार
अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे इहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ उचे उपर ऊचा नाओ इवड़ ऊचा होवे कोई तिस ऊचे को जान सोए जीवड़ाप जान आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगह जूद पार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुटह विकार किते लै लै मुकर पाहे केते मूरख खाही खाहे केते दुख भूख सदवार ए पेता तेरी दातार बंद खलासी भाणा होए ओ राख न सकै कोई जी को खाए कि आखन पाए ओ जाने जितियां मुहि खाए आपे जाने आपे दे आखे से पेके के जिसनु बख्शे सिपसालाहा नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवे अमुल लै जाए अमुल पाए मुला सुमाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुल मुलाख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख्या वेद पाठ पुराण आख्या पढ़े करह वख्यान आख्या बरमे आख इंद आख्या गोपी तै गोविंद आख्या ईश्वर आख्या सिद्ध आख्या केते कीते बुद्ध आख्या दानव आख्या देव आख्या सुर नर मुन जन सेव केते आख आखन पाहि केते कह कह उठ उठ जाहि इते किते होर करे ताक न सकह के जीवड़ भावे तिवड़ होए नानक जाने साचा सोए जी को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावा रंगावार सो दर केहा सो कर केहा जित वै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावन हारे किते राग परिश्यो कहियन किते गावन हारे गावह तोनू पौन पणि बैसंतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदें दासन बैठे देवते आदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह कहानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनु गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनाव नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस्ती वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पाचोली ध्यान की करह बेभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उना नदर नायावै बहुता इहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार
ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲਖਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਗੇ ਡਾਇਆਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨਸੋਰ ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸਾ ਚੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮਨ ਏਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਣ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ਼ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਬ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੀ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛੁਤਾਈ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੀ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤੰਤ ਅਨੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭੌਖ ਲਾਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਟਾਲ ਘੜੀਐ ਸਭ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ

ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨੇ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਣ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਤਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸ਼੍ਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤਜਵੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਤਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਚੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ
नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति बेपूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेतेवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो फूप फूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं परनाशी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी चांद चले हैं तले हैं अपीत हैं अपीक हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रया चांद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्नाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महाबाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपीजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चारपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंत्व प्रसाद आदरूपन आदमूरत जोन पुरख पारु सर्व मांत्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराजही अवतूत रूप रसालु नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजौन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम हीन फेखत ताहू न जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जे बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानी कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जी थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख पार सर्व विश्वरचियो सोयम पव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत अपूत अलख अपेश
अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी का नुस्तत एक पुरकवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग ही न भंग नातम एक पुरख पारु सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही ये रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पानु देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य तर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ्य चात्री छन्त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रया छंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी चंद न सत्रय न मित्रय न परमंग न पित्रय न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र प्रथिशय अदिशय अदृश्य कृशय भगवती छन्त्व प्रसाद कथते के आचिज देशय के आज पिशय के आ गंज कर्मय के आज परमय के आज लुकय के आदित सुखय के अवतूत वर्णय के विभूत करणय के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुजाह के असुख वर्णय के सर्वा अपर्णय के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के वर्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद देव है के आप अपेव है के चित्रं वहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रहीम है रिहा कह के पावक बेअब है के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के साहन साह के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र ताप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कालिम है कि परमं फहिम है कि अकल आलाम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तो मामूल रुजू है हमीसल सलाम सलीखत मुदाम गनीमुल शिकस्त गरीबुल परस्त बिलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रुजवल निदान हरीफुल अजीम रजायक यकीन अनिकल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विपूत है
प्रभुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तु पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैव अकाम है, निर्वाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओअंगाध रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, विनरकं परनाश है, पृथ्वल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विपुगत स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी चंद अपांग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, अपूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निश्चिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगाह है, अनिल अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक है अमितो अमित है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छन्त्व प्रसाद जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रुजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल के राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनाश है बहसुल निवास है के सर्वुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है

अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मुन सलाम हर नर खंड बरनर अमंड अनपवन आस मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशेज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अज जिना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनवरन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालया है हर कालया है कलखंडन है मैं मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व भारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है थप्पा थप है कृता कृत्य अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निर्णायक है सर्वपायक है पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे

अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह टाह नाथी प्रमाथे अजूनी अमूनी नाराग नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे उजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे सुमस्तुल परनासे अगंजुल अनामे सुमस्तुल निवासे नरकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा सुमस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे।

पछाह को शीश निवायु को बतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायु कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायु को बतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायु कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रचा पूर्ण हुए चित की चा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हादय मुहि बचाव हो सुखी बसै मोरू परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मूर अच्छा निज कर दै करिये सब बैरन को आसुगरिये पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाद है मुझे उवरी है मरण काल का त्रास निवरी है हू जो सदा हमारे पच्छा श्री आस तुझ जू करे हो रच्छा राख ले हो मैं रख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा जवन काल योगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आदंतिक कै अवतारा सुई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक के पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील नाद शंभु ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पीव न पावत बेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिच सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेर से तजकीनी उत भुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भय शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जगा स्वरूप स्वयं भव आप रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जीवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रहें तत्काला कृपा दृष्टन जाहे निहरे हो ताके ताप तनक मैं हरे हो रित सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट चाच वस कह न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ केत में शरण तिहारी आप हाथ लिहु कुबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुख इन को छय करता श्री अस्तु जप दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहि सुरस न पावै, सुनै मूढ़ चित लाई चतुरता आवई। दुख दर्द भव निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार। चौपाई को कह चौपाई, संबत सत्रह सहस्पनी।

नामान्यु सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुपेद कहे अमेक न जान्यु श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहु सब तो हे बकान्यु दोहरा सगल द्वार को छाड कै गहु तुहारू द्वारू बाहि गहे की लाज अस गोविंद दास तुहारू।

से पूरे गुर ते जान सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पार पूरे मिणवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पार पूरे पिणवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू

पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर गए मस

रंग विस्माद नागे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि।

पौड़ी बिन सतगुरु किने न पायू, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विच आप रखेऊन कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मुहु चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जम्मिया हौ विच मुआ। हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सचियार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसै हौ विच रोवै। हौ विच भरियै हौ विच धोवै। हौ विच जाति जिन सी खोवै, हौ विच मूरख हौ विच सियाणा। मोख मुक्त की सार न जाना, हौ विच माया हौ विच छाया। हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझै तां दर सूझै। ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै, नानक हुक्मी लिखिया लेख। जेहा वेख है तेहा वेख, महला दूजा।

कर सुकृत धर्म कमाया, पुनि दुनिया तोड़े बंदना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला, नित देव है चढ़े सुवाया।

मंडला खंडावर पंडा अंडर जेरज उत्पुजा खानी सेत जाहा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै सुमाले सब नाहा जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीबाण अबग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग महला पहला लख निक्कियां चंगियाईयां लख पुन्ना परवान लख तप ऊपर तीर्था लख तप ऊपर तीर्था।

जन्म गवाया विच दुनिया का ही आया। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आर जा, पढ़ी है जेते सास। नानक लिख है एक गल और हम मैं चखना चाक। महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, साहोवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे एह निस कहरे, मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग उपेताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंध है पत गवाई, बिन नावे किछ थाए न पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे ते नहीं केवल, हौ मैं शब्द जलाए। पौड़ी।

किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ, नाउ खुदाई अल्लाह भया, नील बस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया, चारे वेद हुए सचियार, पढ़े गुणे तिन चार विचार, भाउ भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुखंतर पाए, पौड़ी सत

इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया। श्लोक महला पहला सिमल।

खाई, अंतर पूजा पड़े कतेबा, संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम ले जाहि तरंदा। महानला पहला, मानस खाने करह निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग, तिन

महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर पूरन गुरु मर्यादा अनुसार बच्चा गगनदीप सिंह सनोब सरदार सुरजीत सिंह जी, बीबी शशि सैनी जी और बच्ची नीलम कौर गरेवाल, डॉक्टर ऑफ गुरजीत सिंह गरेवाल, बीबी बलजिंदर कौर गरेवाल, दोवें परिवारां नूं लख लख लख लख वधाइयां। पति ते पत्नी दा रूप महाराज दी हजूरी विच बच्चियां ने लै लिया है। तुसी असीस देना, जीवन दे कारोबार, जिंदगी दे कारोबार महाराज दे नाम नाल, नितनेम नाल ये सारे परिवार करन, बच्चे करन। वधाइयां दा शब्द गावांगे सारियां संगतां नूं, भैणां नूं, सब नूं।

प्यार दी दात बख्शिश करके नवाजना, सदा चढ़दियां कला बख्शिश करनियां, गुरसिखी वाला जीवन बख्शिश करना। सतगुरु जीओ इस खुशी ते मौके सुभाग जोड़ी वालों आप जिया नूं सुंदर पोशाके भेट किते गए हन, आप जिया ने अंगीकार करने, सेवकां दे लोक परलोक पड़दे कजने, बख्शिश कीतियां कमाइयां विच्चों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है। घर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते, सतगुरु जी बेअंत संगतां ने आप जी के दर घर दियां हाजरियां भरियां, तिल फुल भेटा माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती, कृपा करनी समूह संगत दी हाजरी माया सफली करनी, सबना नू दरों घरों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजना। ऐस वक्त गरीब नवाजी करदे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलन दी समर्था बख्शिश करो, अखर वाद घाट भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कार

मन बिसुरा भक्त जना के मन बिसुरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आपकी निर्माणी है, कुल चुक दिखी मां गुरु बख्शिश करे रहमत करे ते सब ते चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी वो आप जी के सन्मुख होंगे, गुरमत विचार द्वारा तुहानू निहाल करनगे, साडियां भुलां बख्श लैनियां। वाहिगुरु जी का खालसा।